0: ये आकाशवाणी है। आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के प्रथम भाग में आज प्रस्तुत है भैरवी काले का मराठी सुगम गायन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी तथा वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी है।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of regional folk and light music, we bring to you Marathi Sugam Sangeet. The artist is Bhairavi Kale. The accompanists are Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist is Nishikant Deshmukh.
0: Bhairavi Kale ne apne pita Vikas Kale tatha Sushri Mangal Deshmukh इनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आप आकाशवाणी नागपुर की सुगम संगीत में ए ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत अलंकार तथा पीएचडी प्राप्त की है। मधुर स्वर की धनी भैरवी काले ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है तथा वह एक दंत चिकित्सक भी हैं।
1: Bhairavi Kale received her musical training from her father Vikas Kale and Miss Mangal Deshmukh. She is an A-grade artist in light music from Akashvani Nagpur. She holds the Sangeet Alankar and PhD in Hindustani classical music. Possessing a melodious voice, Bhairavi Kale has participated in various music competitions at the state and national levels. She is also a dentist by profession.
0: आज की पहली पेशकश है वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: हियर इज द फर्स्ट गीत वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे, संग बाय भैरवी काले। द पोएटिस इज सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रहे हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते, पेंड बाय पोएटिस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतोस कारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र दीप देवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedaou.

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थी भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: With this Marathi Geet by Bhairavi Kale, we come to the end of this part of the national program of regional folk and light music. The accompanists were Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist was Nishikant Deshmukh.
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम

0: recorded in the studio of Akashwani Nagpur. The program continues. Let us listen to the next segment.
1: ये आकाशवाणी है क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत.
2: This is Akashwani. In this part of the national program of regional folk and light music, you will listen to Punjabi Sufi and folk songs by Sukhvinder Singh.
1: Sukhvinder Singh, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं. संगीत के क्षेत्र में दो दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं. उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है. एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं. उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है. वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं.
2: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, इज अ रेनाउंड सूफी एंड फोक सिंगर ऑफ पंजाब. विद टू डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grid artist of Akashwani.
1: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन, नीमाई मेनू खेड़ियां दी गल ना आख. इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है. हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है.
2: The central theme of this kafi revolves around divine love, unwavering devotion and spiritual union. Heer's refusal to accept the kheedas symbolizes the soul's rejection of worldly attachments and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उत्थे दी करदा हां। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमय रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason.

अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरियां पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने

0: वाली आंखें, सुंदर भौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी हैं, जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: This is a mystical Sufi composition attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the divine beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंग गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: द सॉन्ग lyricized by Dev Haryanvi is a poignant expression of longing, anticipation and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who never

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to the Punjabi Sufi and folk songs sung by Sukhvinder. He was accompanied on dholak by Pradeep Kumar, tabla, charan, sarangi, Sukhvinder Singh, keyboard, Pankaj, flute, Gurdeep Singh, and mandolin and guitar by Charanjit Dhillo. This part of the program was a presentation by Akashwani Jalandhar.